0: चुवन
1: बोलो बोलो
0: चारु चंद्र की चंचल चितुवन
1: शाबाश आगे आगे
0: बिन बदरावर से सावन
1: शाबाश चलो आगे आगे आगे बढ़ो
0: चारु चंद्र की चंचल चितुवन बिन बदरावर से सावन
1: फिर से चलो
2: मुझसे नहीं होता
3: क्यों नहीं होता
2: मुझे भूख लगी है
3: ओहो जाने दो ना प्रताप काफी रात हो गई है और कब तक पढ़ाओगे
4: जब मैं अपने सर दर्द के बावजूद पढ़ा सकता हूँ तो तुम्हें सीखने में क्या तकलीफ है
2: मेरा सर दर्द कर रहा है
4: ये लो मैं जानता हूँ कमली कि तुम थक गई हो तुम्हें नींद आ रही है तुम्हारा गला भर्रा गया है मैं भी थक गया हूँ मुझे भी नींद आ रही है लेकिन मैं सोऊंगा नहीं मैं थकूंगा नहीं मुझे तुम्हारे साथ मेहनत करना है मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर एक खास बात है एक कला है जिसे मुझे जगाना है तुम गा सकती हो एक चोटी की कलाकार बन सकती हो और बनोगी ये मेरा दावा है कम ऑन फिर से बोलो एक बार शुरू से बोलो कम ऑन

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: वो थी हम थे,
1: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। आ हा हा, हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

0: धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।